0: 1520664 र 98449773 न्यू रोलपाली मोबाइल एंड इलेक्ट्रोनिक्स सेंटर तथा रोलपाली सोलर एंड प्रिंट सेंटर सुनसहरी गाउँपालिका 3 जरबांग बाहिरी गाम रोल्पा
1: कॉफी रेडी
2: वाओ थैंक यू